या सिर की है, फूलों सी नाजुक कभी कभी तूफानी शमशीर भी है। आग आग है सांसों में अड़ी रहे चट्टानों से, भीड़ का जंगल दुनिया है तो लड़ी है ये अंगारों।